सुन दे उधवे वाहिगुरु बिन से बाप घनेरे बिन से बाप घनेरे सचिया बादशाह बिन से बाप घनेरे पैसे पर मुगा।

सैदा सैदा बल्ले हारे, सैदा सैदा बल्ले हारे सचिया, सैदा सैदा बल्ले हारे तदिया गे यारे, दास हमारी वायर तदिया गे यारे, दास हमारी वायर जियो बेने सब तेरा, जियो बेने सब तेरा सचिया बादशाह, जियो बेने सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड़ी आई वायर, कहो नानक सब तेरी वड़ी आई कोई ना वो ना जा ने मेरा, ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह, कोई ना वो ना जाने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा।

रंग परंग ने कंजापन करते बा अंदर दियो सुखी जान ला सब तेरे बस तेरा घर पला तेरा घर आनंद बधाए तुद घर मान महता तेज अपना बजर सर्व कला भरपूर दिसै जत कता नानक दासन दा।

0: हे गुरु गरीब नवाज हरी परमात्मा जिड़ा जरे जरे दे विच वसिया होया है घट घट मैं हर जू बसै जा घट घट की अंतर दी जानन वाला वाहिगुरु उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे गुणा नू जिड़ा जीव गावे जगदीश जगत दा दीश ईश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख अंतरजामी महाराज तेरे गुणा नू भावें शेष नाग वर्गा जे दियां हजारां जबाना सन भावें दो फाड़ जबाना दे नाल किन्नियां जबाना गिणियां जांदियां ने महाराज नित नवा नाम लै करके तेरे गुणा नू गाउंदा है पर वाहिगुरु तेरे नावां दा तद भी अंत नहीं पातशाह तू किड्डा समर्थ है महाराज महाराज आप जी समर्थ हो साडी मत थोड़ी है असी कुछ बयान नहीं कर सकते असी ते आप जी दे सागर रूपी समुद्र रूपी जेड़ा दरियाओ महाराज तुहाडा सोमा है ना बाणी दा ओदा आनंद माण सकते हाँ तरत पताल आगास जिन्ने भी हन ये सारे ही वाहेगुरु कह रहे हन असी ते वाहेगुरु जी ये निघे आनंद नू मानन दा कुछ यतन कर सकते हाँ प्रयत्न कर सकते हाँ साडी कीती हुई कोशिश गुरु गरीब नवाज आप दया दे घर विच आन के पूरी करदे ने भाई गुरमुखो जदों असी भावना दे नाल चलदे आ ना कल भी बेनती कीती सी घर विच बैठे होवो पक्खा भी चलदा होवे ना उहदे फर घूमण ते भी तुहानूं इंज अहसास होवेगा जिवें वाहे गुरु कह रहे होवे जिवें कोई माई बहुत ब्रह्मलीनता विच चले गई उह पाथियां पाथी सी जदों उहदे हत्थां दी आवाज आउंदी ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੋਕੇ ਤੋਂ ਕੁੱਤਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗਰਾਇਆ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਜੇ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨ ਜਦੋਂ ਟੋਕਾ ਵੀ ਗੇੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਹਗੀਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਝ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਸਨਾ ਹਿਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ਹੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੀਏ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਹਨ
1: ਏਕਾ ਜੀਹ ਕੀਚੈ ਲਖ ਬੀਸ
0: ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 20 ਰਸਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤਦ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਰਸਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅੰਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਤੈ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤਦ ਸਫਲੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤਦ ਸੱਚਾ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਇੰਝ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਜਪਸਵੀ ਤਪਸਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਾ ਵਾਲਿਓ ਬਣਿਓ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ संत बाबा ईशर सिंह साहिब दी राड़े वाले वो आप एक दीवान विच गए ते दीवान विच आख्या संगत जी बड़े बुलारियां ने तुहानू गुरु का इतिहास सुनाया मैं बचन करा गुरु की शरण दे विच कोई कुत्ता बिल्ला चोर नहीं आउंदा इत्थे सारे ही इंसान आउंदे ने और जिहड़े इंसान प्राणी गुरु की संगत विच आए ने इन्हां दा मेन मनोरथ की है आख्या प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कि तुक फकड़े सा मुकदी चली रहन ए रैन मुकदी जा रही है ए जिहड़ा हीरे जैसा जन्म है ए कौड़ियां दे पा अजाई जाई जा रहा है हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए वाहिगुरु जी दया करनी ए रसना सदा ही तुहाडे गुणा नू गाउंदी रहे
1: जप हर हर शब्द जपीस
0: वाहिगुरु जी दे शब्द नू हरी हरी परमात्मा जी नू ए हर ओ अकाल पुरख वाहिगुरु ते हर हरने जोग जेड़े सारे दुखा नू हर लेंदा है कृपा करके मालक दया दे घर विच आन करके कृपा करदा है ओ अकाल पुरख अंतरजामी ऐसी डाढ़ी अपार कृपा करदा है भाई जेड़े साडे रोग हन अग पाप हन उन्हां नू हरण दी क्षमता रखण वाला है वाहिगुरु जप हर हर शब्द जपीस महाराज जिन्ना ने अपने मुख विचो जपिया तेरा नाम सतगुरु जी उन्हां दी जुग सारे संसार विच शोभा हुंदी है जिन्हां दे मुख विचो तेरा नाम निकलदा है ओ मुख तन हन उन्हां मुखां नू मेरी नमस्कार उन्हां चरणां नू नमस्कार जेड़े चरण तेरे पैंडे वालों चलदे ने गुरु खालसा जी जेड़ा भावना दे नाल जपदा है वाहिगुरु दा नाम अकाल पुरख अंतरजामी ओहदे पापां दा हर लंघना करदे ने
1: हर हो किरपीस
0: वाहिगुरु जी हर हरने जोग हरी परमात्मा आप जी हो हाजर हो और हो करके सहायता करो और कृपा दे ईस वाहिगुरु जी कृपा दे दाते महाराज कृपंता हरियंग मत तत् ज्ञानंग बख्शीद्या बुद्धा कुशल थानंग महाराज आप जी कृपा दे मालक हो आप जी दया करके दया दे घर विचान करके अपने सिखां नूं गल्लां ला लैंदे हो ऐसी कृपा करदे हो जिथे आम असी धारणा विच सुणदे हां ऐसी कृपा करो महाराज नाम ना विसरै नाम ना विसरै महाराज एहो जी कृपा कर दिओ हां तुहाडा नाम ही ना विसरे घर विच बैठे होईए परिवार विच बैठे होईए किते भी होईए तुहाडी कृपा दा सोमा तुहाडी कृपा दा जो करिश्मा है यह वरतदा ही रहे महाराज ऐसी कृपा आप जी ने वरता देनी
1: रहाओ
0: भाई ठहराओ दे रहे ने महाराज ये वो ठहराओ है जेदा हिरदे दे विच प्रकाश करना बहुत जरूरी है जदों गुरु का प्यारा सिख सचमुच अपने हिरदे दे विच भी ठहराओ लै आवे भाई गुरु गरीब नवाज साहिब जी ओहदे मन दे जेड़े वलवले हन उन्हां नूं शांत कर दिंदे ने गुरु कलगीधर साहिब जीओ रहाओ ठहराओ दे करके आम रूप विच श्रीमान संत बाबा श्याम सिंह जी आटा मंडी वाले जो सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे विच कीर्तनियां दी सेवा निभाउंदे सन ओह अपने पावन कीर्तन तो बाद दस्या करदे सन जदों रहाओ बंद आउंदा है ना ते रहाओ बंद दा इह संकेत है भाई कि कीर्तनी संगा ने यह पावन गुरबाणी दे जिहड़ा मेन है इस नूं लै करके इहदे उपर शब्द पढ़ना है पहली सरमौर पंक्ति यह लैनी है रहाओ वाली फिर पावन गुरबाणियां दा अगे कीर्तन करना है आम इदां हुंदा है पर कई वारी गुरु के प्यारे सिख भावना दे नाल होर पंक्ति भी पढ़ लैंदे ने सो रहाओ भाई ठहराओ देना बहुत जरूरी है साडी हिरदे अंदर सहज पावन गुरबाणी दे

महाराज हरि परमात्मा आप जी कृपा करो, स्वामी सर्व कला दे आप जी स्वामी हो, सो श्रेष्ठ आमी पति हो आप जी सारे जगत दे। महाराज कोई स्त्री है कोई पुरुष है सी सारे तुहाडियां जिंदड़ियां हां निमाणियां हां आप जी साडे स्वामी हो, हम लाए हर सेवा महाराज हम हानू सानू कृपा करके आप जी अपनी सेवा दे विच ला लवो। सतगुरु जी तुहाडी सेवा बहुत डाढ़ी है महाराज, सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजै आप गवाए। धन गुरु अमरदास साहिब जी महाराज दिया ने 12 साल धन गुरु अंगद देव साहब जी की डाढ़ी करड़ी सेवा निभाई। भावें कोई चखड़ आंदा है भावें मीह पैंदा है ते भावें कुछ भी है शरीर बिरदा शरीर परेशानी च भी होवे गुरदेव जी ने एक मात्र भी ढिल नहीं कीती। भाव गुरु कलगी धर साहिब जी ये पावन दर है जिहदे विच महाराज जिन्हों सेवा ला देण भाई वह सर्वोत्तम गुरु का सेवक बन जाता है। साडे पंथ अंदर बड़े महान भजनीक गुरु के सेवक होए जिन्हां विचों एक सेवक श्रीमान संत बाबा तारा सिंह जी होए जो कार सेवा सरहाली साहब वाले सन। मैनू उन्हां दा एक बचन याद आया बड़ा सोहना बचन है गुरमुखो तुहानू बड़े ध्यान नाल सुनना चाहीदा। कहिंदे 40 दिन अपने केसां नूं गुरु का प्यारा सिख ढक करके रखे और बड़े प्रेम नाल सत्कार करे केसां दा। 40 दिन केस कोई तुहाडे केसां नूं वेख ना सके, अपने केसां दी इन्नी क परवरिश करनी है और 41वें दिन ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਠ 'ਤੇ ਵਰਸਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਵਰਸਦੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ 'ਤੇ 8 ਪਹਿਰ ਹੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

पंच नार संग अष्ट सुत उठ है तान कलोल गायन तार मिला वही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लय पहार जा संग लाई पांचो आर जा सुरमानंद भास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बान ओ आहे बिनोदा गावे हैं सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र।

मोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप का लंका कुंतल औरामा कमल कुसम चंपक के नामा गौरा औ कांदरा कल्याणा अष्टपुत्र दी

सकल द्वार को छाड़ के गह द्वार द्वार पाएंगे किला जस गोविंदा द्वार द्वारा राज करेगा खालसा की रहना कोई सब मिलेंगे बचे चरण जो उड़की सभा मिले की करपुड़ा बसा डंका बाजे बजे का नंगल कवता चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुक्ते स्वयं भव सुभंकर प्रदा सब जुगते दुकान पुना सिद्धया आलंग स्वरूप सदांग संगे अभंग कुबुद देव देखो बजे दशक बेदंगे आपने जनान गुरु गोविंद जी श्री काल प्रति सहाय दरबार में तेरो दरबार सचखंड वशयन लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबार सब देवते का नमस्कार दोहरा।

0: मन में दुर्दानो मन दुर्दानो मन चिंकारो कर दे रंगारो रात मन दुर्दानो मन
1: Thank you.

तस्तु हि पृच्छस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु वं रटस्तु वं रटस्तु वं जिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि मकातु हि अभूतु हि अभतु हि अछूतु हि अछतु हि जतस्तु हि व्रतस्तु हि गतस्तु

त्वा प्रसाद कबित खूकमल हरि गज गदहा विभूत दारिक दुआ मसान बास करि करत है खूकमट बास लग डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन सदै मरत है बिंद के सदैयता ही जकी बडैया देत मंदरा सदीव पाए नंग फिरत है अंगनाधीन काम क्रोध मैं प्रवीन एक ज्ञान के विहीन छीन कह सकै तरत है भूत बन चारि छिद छाना सब दूता धारी पौन के आहारी सोभ जंग जानियत है त्रिण के बछैया धन लोभ के तजैया ते तुगौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है नभ के उडैया ताहे पंछी की बडैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है जिते बड़े ज्ञानी के तिनो जानी पै बखानी नाहे अस न प्रपंच मन भूल अनियत है भूम के बसैया ताहे बूचरी के जैया कह नप के उडैया सोच रैया कह बखानी है फल के बछैया ताहे बांदरी के जैया कहे आदिस फिरैया ते तबूत के पछानी है जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भजैया सो चकोर सम मानी है सूरज सिवैया ताहे कौल की बडाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जेह ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब दिन जारी रखी।

करता करीम सोई राज कर रहीम होय दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानबो एक ही किसेव सब एक गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो देह राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पे अनेक को भ्रमाओ है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यार न्यार देशन के

आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कणों का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कुड उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भज, केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केते नब बीच अच पछ को करेंगे भज, के तक प्रत।

तो फिर कौन बेखन कहा ना बता को कहा कह कहा वे कहा कह बखानो कहे मैं ना आवे न रोगं न सोगं न मोहं न मातं न कर्मं न बर्मं न जन्मं न जातं अद्वेखंग बेखंग जो नि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परापरम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग छयाद अद्वै अविनाशी न जातं न बातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय उसारे गड़े फेर मेटे बनाए अकादे अभयाद अद्वै अविनाशी परे अंग।

न नेहं न गेहं स नेहं सनाथयो दंडे अमंडे प्रचंडे ब्रह्माथे न जाते न पाते न सत्रे न वित्रे सुभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायं नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न जोभं भूतंग अपेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं स देवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं गजो नियच्छयाद अद्वयजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भय निर्विखातं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग बंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवं सदा सिद्ध विरथं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभादनुक्तं प्रतापे अयुक्तं गच्छयाद विक्तयथापि विभुक्तं गच्छयाद अच्छे स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न शाकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्मं न साकेन न भर्मं न चर्मं न कर्मं न वाक्येन न सत्रं न वित्रं न पुत्रं

ग्रह कहूँ देह दोखं कहूँ औखधि रोग के शोक शोखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जाच गंधर्व की नर कहानी कहूँ राजसी सातकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि की भुगत मैं परम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जाच विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ भद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ अरबी तोर की पारसी हूँ कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश व्याख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान कीर्तन कहूँ मलेच व्याख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागवाणी कहूँ गारुड़ गूढ़ कथा कहानी

अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अक्षय स्वरूप द्वय नाशन तुट तेज अनुकुट भंडार दाता दुरंत सर्वं प्रकार अनुभूत तेज अंचित जगात करता सती वहरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धनम ध्यान जय नेह नहीं व्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह के नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं।

कवन विश्व को पुष्ट है कहां से कवन विश्व को पुष्ट है कवन विश्व को पुष्ट है कहां से राम को करम है कहां राम को नारस कहां चंद्र की जय निष्ठा चेतन की जय निष्ठा जहां ने हम समझ में कहां कहां ज्ञान के मन बोलो की सोगी जाने आदर की हम की दोगी गान को सुरा संदर को कहां जो को सुरार को दाता ज्ञान को बताओ बेचारा बेचारा सरदार विवरण दोष प्रकार था दोष प्रकार दोष दोष थे जय जय बोलसी जय माता दी बिन जय भू माता श्री गुण गाथे राम ने प्रभु सन सत्य ने मस्तन श्री राम ने प्रभु गुण सत्य ने गाथा सुर राजन युद्ध गुण चंद के रंता सुर आनंद दे रे वचन सुरन नाथ जयंती ने विवंती जोग जय जय हटि की तरे विद्या जोग जय हो श्री राम थारे ने मदन पाप में मोह श्री राम का ने मदन पाप को ने मारन दोष ने दान से रूप बाण बाण दत्त ने प्रणय ने सुर बाण दुर्गा मरण से श्री प्रहार गुरु ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ
दामने प्रकाशे उन्नासे ज्योत प्रकाशे सलेम निरानवी विपद खंड सर्वल बल खंड उत्तर खंड उत्तर खंड प्रथम सलेम अष्टवाल दबा तन को लेले महान शास्त्रा ने दबा कोट को लेले जन जन रोन सुमरण करे लेले जन आद नाद आद आद करे आद दो दो प्रवाद छन से विरचन संत दो दो प्रण सोत सरे सदा संतान प्रदोष प्रदान हे रे सर गा हे दो हे दरे दाहे अर्ध काहे दो हरे गंजन कुमार ने अतुल प्रभा ने संत ब्रह्मा ने याद अतुल दे जय जय हो श्री राधा श्री जय जय जय प्रभु श्री दोष हाते साध कारण शरीर उल्टे कर तो गए ले जो जग ने ले तो दिन करे हिलाए तो जब कण से तो जन्म कण ने आम जान कण मार ब्रते जन कण दा मुडुक के नाम के बाल बम के मुडुक के नाम सो दा ले ले के हो जय जय हो श्री राधा श्री जय जय जय प्रभु श्री नाथ मते ने मत तथा कासुर मारण ने निवारण पछरो चलन ने बटे बा ब्राह्मण बिदु दाम रे मुडुक चंडे कण ਮਨਨ ਕਾਲ ਕੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਨ ਆਨੰਦ ਚਾਰੇ ਕਰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਤਨ ਵਰਦਾਰੇ ਮੁੰਡ ਮਰਦੇ ਵਾਲੇ ਆਦੇ ਵਰਦਾਉ ਸੀ ਮੁੰਡ ਕਰਦੇ ਮਜਨ ਧੂਮ ਜਬ ਨੂੰ ਸਨਾਦ ਸਾਥੇ ਮਨਨ ਧੂਮ ਜਬ ਨੂੰ ਸਨਾਦ ਸਾਥੇ ਰਕਤਾ ਸੁਰ ਮਰਦਨ ਚੰਡ ਚੱਕਰ ਦਨ ਰਕਤਾ ਵਰਦਨ ਬਡਾਲ ਮੰਦਿਰ ਕਰ ਦਨ ਰਵਨ ਕਰ ਦਨ ਜਨ ਪ੍ਰਤਿਨ ਸਤ ਅਮਰ ਕਰ ਬੰਦਰਮ ਦੋ ਜੇ ਨੇ ਮਤਨ ਅਧੂਮ ਰਾਮ ਦੇ ਬਦਨ ਸੰਤ ਸੁਨੇ ਨੇ ਚੁਨ ਸੰਤ ਧੂਮ ਰਾਜ ਬਨ ਪਾਸ ਦਸ ਬਨ ਸੁਮ ਜੋ ਮਤਨੇ ਜਨ ਮਜਨ ਰੋ ਸਿੰਘ ਬਨ ਕਰ ਦੇ ਮਤਨ ਅਧੂਮ ਰਾਮ ਦੇ ਬਦਨ ਸੰਤ ਸੁਨੇ ਨੇ

0: करुणानिदान कारण स्वरूप जय करुण चरण नहि करु अर्ज जय च फिर रहन करन काल उप जय वेदन ते कर पाल तप जी वरदान बिर हर सतन रूप बुद्धं तमल तस नो सर रूप ते न पारं करंग नो जय ते प्रेम में तार जय जय मन हे जपन तन दुरन ते रे धर्म में दिन तक नो अनंत जय योग न जन आए जन पर जान दिन आए बुद्ध जल रह तप तरा बाट ते न तो एक गोट ते न गोट अपन हाथ कई कई बोल रे इंद्रिया दुबा करे बे बोल रे सब जुग मा नो जय रे केंद्र दाहत है तो दुखन का दल तो जन है बल है दल का है का दल का दल के जंग में हजार न पूर्ण प्रिय प्रिय नेत्र से बार है हमर पूर्ण बार न पाए सके भद्र में वेद पदे मर में सब चार में रोज में राज प्रिय को कर राज करो देव बाजी रोज में तो कर राज करो पीठ पर के मुझ पर ना बजन तो बहुत पीठ पर मन पर ना ले दे बाबा देव पर पे मेरे बन वे वे देव पर मेरे ऊपर में आए वेद पर मन लग तेरे पर ना हस्ते पर वेद कर हार था वो पूर्ण से हम के मारो हाथ पर से पूरी पर मां पर पावे आदि पर काम क्रोध न लोभ न मोह न रोग रास लोग न दुख न करह देह रोग न सुने न सबो न रहे हरि हरि ने सहे सहो न ज्ञान बगे द जान को दे जमीन बगे को दे मार को न हरे कर नहीं को बोल द जन तुम रे सर सन दा से को को बदल है हरे तो तुम सर से परम आप द है रोग न पे अर सो मन ते जल जो गुण ते रोग मन द बचाओ न दे जो जो चला बहुत कहा बताओ तन ते न लाज न पावे बताओ तन ते न हर मन को कर दे कर पाप सब को न पेट न पावे और की बात को हक में तो तो आसो पेट नहीं के पेट बीच पे आवे तो पेट जाय पर नीच वचन रे बाप रे बुद्ध तो नहीं तो ध्यान रे बो मन या तो बता रे जात पे जाय छे मुझे मन से हर सुन ना आवे तो तक पुराण से पे नहीं पार बाबा हम को नहीं सही ने नहीं पार बाबा हम को जो के सब ही खुद ही सब रहा पर हर सब नहीं आवे तो हर नारद से चतुरान से रोमनारे से सब को मिल गाने उस पेड़ में देव से सहज तो के सभा कर पेड़ कर दे पर नंदे नयो के सभा पाए सके ने बाहर आए मां से सना से नंदन दाए मां पद सर से को मन पाए दे को जो स्रोत है को मन को वेद पुराण जते को पुराण का वेद वेद को सब ने बचे पर ने न पाए सके मन पे सब के दे पे ने पाए तो के और ने तो के धरा ने रूप न रे हरे इंद्र न सा राग रूप न गते हम रे आनंद आनंद सुखान दे ते सब के ने पे नहीं बोलता रे वे जीवत को बट की ऐसे अंति मोहदान को प्रिय हरे दिन दिन वे कर वे संबोधन करे तेरे नाम पे कर प्यारे को बट के तेरे नाम पे कर प्यारे आसन को बट करे अष्टांग धरे भवन आसन करे कर प्यारे दिन रे भवन आसन करे जे बिन आनंद की हो के आदम से धारे को धारे अत्र के चलैया चित छत के धरैया चित धरैया के चलैया मां के सतय के साल है जान के देवैया मन के मन के बढ़ैया मां के मन के देवैया रख के बढ़ैया मां जा लान के देवैया जो जग के बढ़ैया को विरुद्ध के बढ़ैया मध्य के देवैया मां के मन के मां बुद्ध के ज्ञानी मन के मां महा गुण पद के दंग के देव का के दंग के मां बुद्ध मां के दल दंग काल मन के काल मां काल के काल है पूर्वी न पार बाबा हैं गुला है माले जावे न उरगर बाबे जिंग बुलंगा माले रे नग गुमर कर बेदी जो गुथा रे बेदी सान मान के जो गंदो जार धप के यार धी यार धे के रंधे मार धप के यार धी यार धे के फिर उनकी माने अंधारे कुरे से अपने पर्चे में के पंचे में पतुरे ने जगे हम चने मर चम जंगे लंदे रे मार सो धप में पागा रे दिन डबे ते लंगे
1: मचीन के
0: ಸದಾನಂದ

0: जी गुरु निवास जी अंतर्धाम श्री जी गुरु श्री महाराज जी अंतर्धाम श्री अनुष्ठान श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तार श्री गुरु गोविंद सिंह जी पांच पवित्र स्थान कर जिस कंबर बाद यहां दया बढ़ दे होए कंबर कीर्तन कर सब का जैसे ने कहा बिंत महाराज जी जैसे जिसका जाने भी चुना बिना दिन का सो सो जाने पर जाने करना महाराज नाम दान कर सके बाद जो स्नान दे और पावन सुनिया के बाद मुझे प्रश्न पड़े करने यात्रा यात्रा
1: कहा शब्द पे जाने मारो की जाने मारो

विस्माद सुबुद विस्माद सालाह विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़ा विस्माद तू विस्माद देखा।